अर्धरास करणे अंग संसायो ना जन्म दिन दे खुशियां बजाओ। सरदार हंसराज सिंह राजेंद्र सिंह पंज सौ रुपए आदर कर दे। दीर्घ आयु बख्शनी दे रोगता बख्शनी। सरदार परमिंदर सिंह गुरप्रीत कौर जी सरदार कवल सिंह पुरी।

सर्व नाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत जागत जोत जप निसबासुर एक बिना मन नयक नान

घरता तेरे सब कुछ है जिस दे सुपावे। नाम जिनके मन उसी आवाज शब्द घनेरे। सच नामे आधार मेरा जिन पुखा सब गवाया। सदा कुर्बान किता गुर विटों जिस दी आए वडे आया। कर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कला जिद घर धारिया। तुरकार पाया तुझन कौसे नाम हर के लागे। आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। सुनते पुनित कहते पवित्र सद

मुड़ रुड़ पिट तना गोड़ ताकु वेद पावे पूजे तना ताए जाके राके रही यत है। विश्व पा जगत का दीन दयाल बैरी सा सदा प्रतपाल जम जाल तेरत है। जोगी जटा धारी सती साचे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्यास दे पैसहत है।

का कहत है। नाचत पीरत मोर बादरत करत कोर दामनी अनिक भाव करी होई करत है। चंद्रमा ते शीतल ना सूरज ते तपज तेज इंद्र सुन्ना राजा भाव भूमि को भरत है। शेष तपस्याद ब्रह्मा से न वेद चारी सनत कुमार से तपस्यानत है। ज्ञान के भी इन काल फांस के दिन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक शिव भई एक गए एक फिर भई रामचंद्र कृष्ण के अवतार ही अनेक है। ब्रह्मा और विष्णु के ते वेद और पुराण के ते सिमरत समूहन के होए होए बिताए हैं। मोन दिमदार के ते अश्विनी कुमार के ते अंसा अवतार के ते काल बस पई है। फिर औ पिकाम्बर के ते गने न परत इते भूम हिते होई का फेर भूम ही मिले हैं। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्रे की छाया कई कोस ला चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिर से दे बड़े बड़े राजन के द्रव को लदलत है। मान से दिलीप अदिलीप का से छत्रधारी मान से मई अदिलीप का से छत्रधारी बड़ो अभिमान बुझ दंड को करत है। दारा से दिली सर दुर्योधन से मानदारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। सज्जते करे अनेक तोप जी का पट पेश भोज दिया अनेक दाने आवत है। शीश काओ कहां पयो माले जो पे काटत अनेक दंद सोता न डंडा अस टांग अथ तीस गाओ कहां पयो रोगी जो पे डार रायो और दमुख मानते न मोड़ निहुरायो आद ईस काओ काम न आदिन सदा दाम न प्रवीण एक भाव न बीन के सिपाव पे जगदीश काओ। शीश पट कत जाके कान में खजूरा तस है। मुंड छट कत मित्र पुत्र हूं के सोग सौ आग को चरया फल फूल को बचया सदा बन को भरमया और दूसरो न भोग सौ का भयो भीड़ जो घसत सिच प्रछन्न सब माटी को बचया बोल पूछ लीज जोग सौ काम ना दिन काम क्रोध में भरवी एक भावना बीन कैसे पिट पर लोग सौ। नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करियो ही करत है। एक पाए ठाटे सदा बन में रात वृक्ष फूक फूक पांगुम श्रावक तरत है। पहन अनेक जुग एक ठौर बास करे काक और चील देश देश विचरत है। ज्ञान के बीन मादान में ना उजलन भावना यकीन दिन कस कतरत है। जैसे एक स्वांगी कहो जोगी या बैरागी बने कभू संन्यास भेष बन क्या दिखावई कहो पौन हारी कहो बट लाए तारी कहो लोभ की कुमारी सो अनेक गुण गावई कहो ब्रह्मचारी कहो हाथ पे लगावे बारी कहो दंड तारी हो का लोगन प्रमावई काम न अधीन परियो नाचत है नाचन सो ज्ञान के बीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पांच बार गीदर पुकार परे शीत काल कुंचर और गदहा अनेक दप कर ही कहां पे जो पे कल वत्र लियो का।

विचार ही। ताप के सहत जो पे पाई है अतापना, तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के कियते जो पे पायत अजाप दे, पूदना सजीव तुई उच्चरत है। नभ के उठत जो पे नारायण पायत, अनल आकाश पंची डोल पुकरत है। आग में जरत गत रांड की परत, कर पत्ताल के वास क्यों भुजंग न तरत है। को भयो मुंडिया सन्यासी को, जोगी पयो को, ब्रह्मचारी को, जति अनुमान वो। हिंदू तरक को राव जी, मांसाभी मानस की जास भय के पहचान वो। करता करीम सोई राज के रहीम, ओई दूसरा भेद कोई।

सोई पूजाओ निवाज ओई मानस ब एक पाने को प्रमाऊ है। देवता देव जच गंधर्व पुत्र हिंदू न्यारे नारे देशन के वेश को प्रभाव है। एक नैन एक कान एक दय एक बान खाक बात आतस आओ आभ कर लाओ है। अल्लाह अब एक सोई पुराण कुरान ओई एक ही स्वरूप सब एक ही बनाओ है। जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हो का फेरे आग में मिलाएंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरा दूर के कनु का फेर दूर ही समाएंगे। जैसे एक नाद ते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए ताहि ते उपज सब ताहि में समाएंगे। केते कच्छ मच्छ केते उन्न को करत भच केते अच्छे बच्छ सपच उड़ जाएंगे। केते नब बीच अच्छ पच को करेंगे भच के तक प्रत चो।

उपज सब ताही में समाएंगे। कुकत फिरत किते रोत मरत किते जल में डुबत किते आग में जरत हैं, केते गंग बासी केते मदीना मक्का निवासी केतक उदासी के पर माई ही फिरत हैं। करवत सात केते भूम में गडत केते सुआ पे चढ़त केते दूग का परत हैं। ज्ञान में उड़त केते जल में रात केते ज्ञान के बिन जग जा रही मरत हैं। सोधारे देवता विरोधारे दानो बड़े बोधारे बोधक पर बोधारे जापसी कस हारे चंदन लगाए हारे चुआचार पूजारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी। गा हारे गोरन मनाए हारे मणि मटली पे हारे बीतन लगाए हारे छापसी। गाय हारे गन

द्रोहं न द्वैखं न कर्मं न भर्मं न जन्मं न जातं न मित्रं न सत्रं न पितरं न मातं न नेहं न गेहं न कामं न धामं न पुत्रं न मित्रं न सत्रं न भामं अलेखं अभेखं अजूनि स्वरूपं सदा सिद्धदा बोधदा वृद्ध रूपं न ही जान जाय कछु रूप रेखं कहां बासता को फिरा कौन पेखं कहां नामता को कहा का कहा कहा कब खानो का मन आवे न रोगं न सोगं न मोहं न मातं कर्मं न भर्मं न जन्मं न जातं अद्वैखं अभेखं अजूनि स्वरूपे नमो एक रूपे।

ते कृष्ण से कीट कुट उपाय उसारे गड़े फिर मिटे बनाए अगाधे अभयादत भया बनासी परे अंपरा परम पूरन प्रकाशी न आदंग न व्यादंग अगाधंग स्वरूपे अखंडत प्रताप अच्छा भूते न जन्म न मरण न वर्ण न व्याधे अखंडे

अभ्यक्त तेज अनुभव प्रकाश अच्छा स्वरूप अद्वय अनाद अंतुट तेज अनखुट भंडार दाता दुरन सर्वंग प्रकार अनुभूत तेज अन गात करता सदी हरता सनात आसन अडोल अनुभूत कर्म दाता दयाल अनुभूत धर्म जय मित्र शत्रु नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मा जय कर्म परम नहीं धर्म त्यान जय ने गे ने व्योत्मा जय जात पात नहीं शत्रु सा जय ने गे ने चैन चित्र जय जात पात नहीं।

रोग शोक नहीं शत्रुषा जय त्रासवा नहीं दे ना जय अंत नहीं रूपरा जय रोग शोक नहीं जोग जुग जय त्रास नहीं भूम भगत जय काल व्याल कट्टे ना अंग अक्ष भंग जय नेत नेत उच्चरंत वेद जय अलक रूप कथत कतेव जय अलक रूप आसन डो जय अमित अच्छा अतोल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधन दुरंत तन शीत गांबर का संत कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन योग विद्या विचार साधन तद्दप पावत न पारे कई उर्द बांध देसन प्रमंत कई उर्द मत पावक चुलंत कई सिमृत शास्त्र चरंत वेद कई कोक काप कथत कतेब कई अग्नहोत्र कई पवन आहार कई करत कोट मृत्यु को आहारे कई करत साग पै पत्र भचने तदप दे होवत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व परीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत को वेद रीच ज्ञात कर्म कहूँ अग्न होत्र कऊ तीरथ धर्म कई देश तेज पा कारण कई देश देश विद्या पढ़ंत कई करत पांत पातन विचार नहीं नायक तास पायत न पारी कई तीरथ तीर पर मत सो परम कई अग्न होत्र कई देव कर्म कई करत वीर विद्या विचार नहीं तदव तास पायत न पारी कऊ राज रीत कऊ जोग धर्म कई सिमर सास उचरत सो कर्म निलियात कर्म कऊ हस दान कऊ अश्वमेध मघ कोप कान कऊ अग्न कऊ करत ब्रह्म विद्या विचार कऊ जोग रीत कऊ उर्दचार कौ करत जज गंधर्व गान कौ धूप दीप कौ अर्घ दान कौ पितृ कर्म कौ वेद रीत कौ नृत नाच कौ गान गीत कौ सर करत शास्त्र सिमृत उच्चारे कई भजत एक पग निरतारे कई ने देन कई गय वा कई ब्रह्म दे देसन उदय कई जल निवा कई अग्नता कई जपत उर्द लट कंत जा कई जपत जोग कल्पं प्रजंत नहीं तदब तास पायतन अंत कई करत कोट विद्या विचार नहीं तदब देश देखे मुरा बिन भगत सकत नहीं।

तोटक छांदे। जय जंपो जुगण जूजंग भय कंपो मेर पयाल भवन तप ताप सर्व जलेर थलंदन उच्चर इंद्र कुमेर बलंग अनखेद सरु अभेद अभ्य अनखंड अबोध अच्छेद अच्छे अनकाल अपाल दयाल स्वंग जय ठट्य मेर आकाश भ अनखंड मंड प्रचंड नरंग जय रचन दे अधे बर सब कीनी दीन जमीन जमा जय रचंग सर्व मकीन मका जय राग ना रूप ना रेग रुखंग जय ताप न साप न शोक सुखंग जय रोग न शोक न भोग जय खेद न भेद न छेद छय जय जात न पात न मात पितंग जय रचंग छत्री छत्र छिदंग जय राग न रेख न रोग बणंग जय द्वाग न दाग न दोग गण जय अंड ते ब्राह्मण रचियो दस चार करी नौ खंड सत्ययो रज ताम तेज अतेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्री सिंध रो बिंद नगिंद नगंग श्री जच गंधर फरिंद भुजंग रज देव अदेव अभेव नर नर पा नृपा कला त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज सेतज ओज भुजंग किए दे अदेव सराध पिता अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रजातन पातन ज्योत जुदंग जय जातन पातन मात सुदंग जय रोग न शोग न भोग जय जंपय किन्नर जाच्छ जुवंग नर नार निपुंसक जाय किए गण किन्नर जाच्छ भुजंग दिए गज बाज रथा तिक पांत गणंग भवभूत भविक भवान तुअंग जय अंडज सेतज जे रज रच भूम आकाश पताल जल रज पावक पान प्रचंड बली बन बास कियो फल फूल गली वो मेर आकाश निवास छितंग रज रोज एकादि चंद्र पिताय दुत चंद दिनी सह दीप दई जय पावक पान प्रचंड मई जय खंड य खंड प्रचंड जय छत्रोप छपाई दिए जय लोक चतुर्द चार रच नर गंधर्व दे अदे सच्चे अनुदूत अभूत अछूत मत अनगात अभ्यात अनाद कतन अनखेद अभेद अछेद रंग चार चतुर्द चक्र फिर जय राग न रंग न रे गुरु जय सोग न भोग न जोग जुग वो बंजन गंजन आसिरंग भवंद जय बंदत देव अदेव नरंग गण किन्नर जच भुजंग रचे मण माणिक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज प्रतंग जय पार न पावत पूर मतंग अन खंडे स्वरूप दंड प्रभा जय जंपत वेद पुराण सुभा जय वेद कतेब अनंत कह जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेब जप सुत सिंध अदो मुख ताप तप कई कल्पन लो तप ताप कर कृपा निध पान पर जय फोकट धर्म सुब तज है एक चित कृपा नित कुज है ते वैभव सागर कोतर है वह भूलन दे पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कोड़ वृत्ति वेद उचारत सार सुती।

अगंजियाज देवा भंज भंज जानिया अभूत भूत हसदा अगंज गंज मानिया अदेव देव हैसदा अभेव्यो नाथ सम सिद्ध वृद्धिदा सदी सर्व साथ अनाथ नाथ नाथ अभंज भंज हैसदा अगंज गंज गंज है सदेव सिद्ध वृद्धिदा अनूप रूप स्वरूप अछिज तेज मानिया सदेव सिद्ध सुधिदा प्रताप पत्र जानिया जय राग रंग रूप है न रोग राग रेख है अधोक अदा अदग है अभूत अभर्म अभेख है न तात मात जात है न पात चैन वर्ण है अधिक असिक अभेख है।

एक नाथ जानिया सदी सर्व ठौर में विशेष ज्ञान मानिया न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बसे आवई पुराण अकुरान नित नित के बतावई न कर्म में न धर्म में न परम में बताइय अगंज आज देव कहोस कै सिपाही।

मकिन और मकान अप्रमाण तेज मानिया है। न देह है न गेह है न जात है न पात है न मंत्र है न मित्र है न तात है न माता है न अंग है न रंग है न संग है न साथ है न दुख है न दाग है न द्वैख है न देह है न सिंह है न शार है न राव है न रंग है न मान है न मौत है न साख है।

अबंज है करीम है कुरान है अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है ना रोग है ना सोग है ना भेद है ना भंड है ना अंग है ना रंग है ना संग है ना साथ है प्रिया है पवित्र है पुनीत है प्रमाथ है ना सीत है ना सोच है ना ग्राम है ना घाम है ना लोभ है ना मोह है ना क्रोध है ना काम है ना देव है ना दाता है ना नर को स्वरूप है ना छल है ना छिद्र है ना छिद्र की भी होता है ना काम है ना क्रोध है ना लोभ है ना मोह है ना द्वैख है ना भेख है ना दोई है ना द्रोह है ना काल है ना बाल है सजीव दयाल रूप है अगंज है अभंज है अभर्म है अभूत है अच्छेद छेद है सदा अगंज गंज गंज है अभूत अभिज्ञ है बलि अरूप राग रंग है न द्वैख है न भेख है न काम है न क्रोध कर्म है न जात है न पात है न चित्र चैन बन है व्यंत है अनंत तेज मानिया अभूम अभिज है सदा छिद्र तेज मानिया न आद न व्याद है अगाध रूप लेखिया अधोक है अदाग है अक्षय प्रताप पेखिया न क्रम है न परम है न धर्म को बनाव है न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है न छल है न छिद्र है न छिद्र को स्वरूप है अभंग है अनंग है अगंसी विभूत है न काम है न क्रोध है न लोम कार है न आद है न गाध है न व्याध को विचार है न रंग राग रूप है न रूप रे के रार है न हाव है न भाव है न दाव को प्रकार है गजाधपि नरादपि गांत सेव है सदा सतस्पति तपस्पति वनस्पति जब सदा अगस्त आद जे पटे तपस्तपि विशेखी है व्यंत व्यंत व्यंत को करंत पाठ पेखिया अगाध आद देव की अनाद बात मान्या न जात पा मंत्र मित्र शत्रु सुने जा।

धर्म करम प्रवीण चंद्र मंद्र तंत्र जगवाद ब्रग पार हटकी विखै बसै सब ठार मन धारे जात पर तात जाको मंत्र मात्र मित्र सर्व ठार विखै रम्यो ज चक्र चैन चित्रे आदेव धारमरा गाना अनंत अंत न जाने आ विखा देव दुरंत देव न जाने जय मरम वेद कतेव सनक अवसन केश नंदन पाव है ना सेव जाच किन्नर मच्छ मान मृग और पार नेत नेत पुकार है शिव रुद्र आव मुख चारे नेत नेत पुकार ही शिव शक्र आमुख चारे सर्व सपतार के तर जापे जय जाप आदे अगाते अनाद मुर अथाप जंत्र मंत्र न आवे कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठार रहो विराज धीराज राज प्रवीण जज गंधर्व देवदानो न ब्रह्म क्षत्रिय माह वैष्ण के विखा विराज शूद्र भी वह नाय गुड़ गौड़ न भील भीका ब्रह्म शेख स्वरूप रात दिवस न मद उर्द न भूम आकाश अनूप जात जर्म ना काल करम ना धर्म करम विहीन तीर जात न देव पूजा गोर के नाधीन सरस्वतार के तर जानिय जय ज्योत शेष नाम सांस फान नेत पूरन होत सो सो हटेश्व सुर विरोध दानो सर्व गागा हटे गंधर्व गवाय किन्नर गर्भ पड़ पड़े थके महाकव गड़त गाड़ अनंत हाँ।

नात अगन बाय जले थले में सर्व ठार निवास है। देगे ने स्ने अभिना जीत सर्व गंज सर्व मंज सर्व ते अनभीत सर्व कृता सर्वता सर्व दयाल द्वेक चक्र चन्न भरण जाको जात पाद अभेक रूप रेगना रंग जाको राग रूप न रंग सर्व लाख सर्व गा सर्व ते अनमंगे सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को प्रतपाल दीन बंधु दयाल स्वामी आदेव पाल दीन बंद प्रवीण श्री पर सर्व को करतारे वरण चन्न चक्र जागो चक्र चन्न कारे जात पात न गोत्र गात्रा जात पात न गोत्र गाता रूप रेख न वरण सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व भू को वरण दुष्ट गंजन शत्रु भंजन परम पुरुष प्रमात दुष्ट अर्था श्रेष्ठ कर्ता कितमय जे गात भूत भव भविक भगवान प्रमाण देव अगंजे आद अंत ना श्रीपद परम पुरख भंजे धर्म के अनकरम जित केन तान पसार दे अदे कंदर्भ किन्नर मच्छ कच्छ पारे भूमका जले थले में मान्य जय नाम दुष्ट अर्था पुष्ट करता श्रेष्ठ अर्था काम दुष्ट अर्ना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोविंद मित्र पाल शत्रु घालक दीन दयाल मुकांदे अगौर दंडन दुष्ट खंडन काल के काल दुष्ट अर्ना पुष्ट करण सर्व के प्रतपाल सर्व करता सर्व

सर्व खंड सर्व दंड सर्व कर्म अधीन सर्व स्मृतन सर्व शास्त्र सर्व वेद विचारे दुष्ट अर्था विश्वभर्ता आद रू अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदेव खंडे भूम का जले थले मैं जपत जा अमंडे सृष्टार विचार जिते ज्ञानी सो विचारे आदेव पाश्री पर दुष्ट पुष्ट प्रहारे अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महिंद्रे वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उप इंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता सर धर्म चार विचार वेद वेव न पावश रुद्र मुख चारे कोट इंद्र उपेंद्र व्यासनक सनत कुमार गा गा थके स्वगुण चक्र तभ मुख चारे अंत न मध्य जाको भूत भव भवान सत द्वापुर तृतीया कल युग चत्र का।

दुर्जंदल दंडन सर्भ्यंडन दोस्तन कंदन आद प्रते चरासुर मारन पतित धारण नरक निवारण गुणगते अचेय खंडे तेज प्रचंडे खंड उडंडे अलगमते जय जय हो सीमा खासुर मर्दन राम कपर्दन छत्र जिते आसुरी भ्यंडन दोस्त निकंदन पुष्ट उदंडन रूपते चंडासुर चंडन बन विमुंडन तंद्र विध्वंसन मयक मते दानो प्रहार नरक निवार अधम उदान उर्द दे जय जय हो सीमा खासुर मर्दन राम कपर्दन आदि वृते दारुत वंग बबर भवंग भुजा फरंगे तेज बरंग लंकुड़िया फांद आयुध बान सैन विमर्दन काला सुरंग अष्टायुध चमका भूकण दमका अत सत झमका फंक फनंग जय जय हो सीमा खासुर मर्दन रम कपर्दन दात जिनंग चंडासुर चंडन मुंड विमुंडन खंड खंडन खून खिते दामन दमंगण दुजा फरंगण फणि फुंकारन जोध जिते सरदार विवकण दुष्ट पर करखण कुष्ट प्रहार खण दुष्ट मते जय जय हो सीमा खासुर मर्दन भूम काश तल उर्द दे दानी प्रहासन सुसाप निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गुड़गते रक्तासुर आचन ध्वज प्रवाचन निधन रांचन धर्म प्रते सुरुणत अचिंती नाल विमंती जोग जयंती खड़क दरे जय जय हो सीमा खासुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अगोग निवारण दुर्प्रचारण श्रेष्ठ उबारण सदमते फणि अर्पण बाघ पकारण शस्त्र प्रहारण साधमते साति स्नान अष्ट प्रवाण बोल निवान तेज अतुलंग जय जय हो सीमा खासुर मर्दन भूम आकाश पताल दलंग चार चर चमकारण छिछुर हारण धुम दुकारण द्रपमते दाड़ी प्रदंते जोग जयंते मनुज मथंते गुड़कते करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूरज प्रत्यजन अष्टभुते।

सुर नर मुन बंधन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाश मृत्यु मते कौरु कुमारे अदम उदारे नरक निवारे आदकते किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंगारोहण पितल तले जय जय हो सी सब ठार निवासन बाय पताल का सनले संकट निवार अधम उदारन तेज प्रकरण तुंद तपे दुख दोक ध्यंती ज्वाल जयंती आद अनाद अगाध अच्छे शुद्ध दास समर्पण तर्क वितरकण तपत प्रतापण जवत जीवे जय जय हो सी शास्त्र प्रकरण आद अनिल अगाध वे चंचला चकंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तच सरे करकसा कुटारे नरक निवारे अधम उदारे तुर भुजे दानी दमंके के हर लंके आद अतंके क्रूर कथे जय जय हो सी रक्तासुर खंडन सुंभ चक्रत निसुंभ मथे भारत विलोचन वृतन विमोचन सोच विशोचन काज कसे दामनी प्रहासे सुख सरनासे सुवृत्त सुभासे दुष्ट ग्रसे चंचला प्रांगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय हो सी महासुर मर्दन आद अनाद अगाध उर्तंग गणका विराजा रुंजन भाजा ब्रह्मा भाजा सन सुरंग को कल सुन लाज कलविक भाजा सुख उपराजा मधुर दुर्जन दल दक्षा मंथन रिच्छा सबन भजा रोहरण जय जय हो सी महासुर मर्दन चंड चक्र तन आद गुर चाचर पर जोधन दुष्ट विरोधन रोष अरोधन कुरुल बेते दुम राज विदुंसन प्रलाप प्रदुंसन जोग विदुंसन सद्मते जालपा जयंती शत्रु मथंती दुष्ट प्रदान गाढ़मते जय जय हो सिंह खासर मर्दन आद जुगाद गादगते खत्रयान खतंगी अभय अभंगी आद अलंगिया गादगते वरलाज व्यंडन चिच्छर दंडन तेज प्रचंडन आद प्रते सुरनर प्रतिपारण पति उदारण दुष्ट निवारण दो हरे जय जय हो सिंह खासर मर्दन विश्व विध्वंसन श्रेष्ठ करे दावनी प्रकाशे उन्तन्ना से ज्योत प्रकाशे अतुल बले दावनी पर खरखण सर्वर वरखण दुत पर धड़खण पितल तले अष्टायत बाहन बोल निवाहन संत प्रणाहन गुड़गते जय जय हो सिंह खासर मर्दन आद अनाद गाद प्रते दुख दोग प्रवचन सेवक रचन संत प्रचंदन शुद्ध सरे सारंग सनाय दुष्ट प्रदाय अर्दल गाहे दोग हरे गंजन गुमाने अतुल प्रमाणे संत जमाने आद अंते जय जय हो सी महखा सुर मर्दने साध प्रदक्षण दुष्ट हंते कारण करिली गर्भ गैली ज्योत दिले तंद मते अष्टाय चमका शास्त्र जमकण दामिन दमकण आद प्रते दुख दुखी दमंका बाग बबंका भुजा फरंगा सुदगते जय जय हो सी महखा सुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चचरासुर मारण नरक निवारण पति उदाहरण एक बटे पा पान बिहंडन दुष प्रचंडन खंड अखंडन काल कट्टे चंद्रानन चारण नरक निवार पति उदारण मंड मथे जय जय हो सी महखा सुर मर्दन धूम्र विध्वंसन आद कथे रक्तासुर मर्दन चंड चक्रदन दानो अर्दन बिडाल वधे सरदार विबरखण दुर्जन धरखण अतुल अमरखण धर्म दुजे तुम राज विध्वंसन

आंदे। तुम कहो देव सर्वम विचार जिन कियो आप करते बसा जद अभूतान भय अनंत तो कहो जथा मत्राण तंत करता करिम का दर कृपा अद्व अभूतान भय दिया दाता दुरंत दुख दुख हरत जह नेत नेत सब वेद कहत कई ऊंच नीच कीनो बनास वार पार जा को प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाए मन मूड़ क्यों ना सेवंत ताहे कई मूड पत्र पूजा करन कई सिद्ध सास सुर सिवंत कई पलट सुर सिद्धा कराए प्रभु एक रूप करुणा निधान कामल कृपा दुख दुख हर्त दाता दिया अंजन विहीन अनभंजना जल तल प्रभा सर्वत्र सा जय जात पा ने भेद ब्रह्म जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय जात पा ने भेद ब्रह्म जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय शत्रु मित्र दो एक सा अच्छा स्वरूप अब चल अपारे जानी न जाय जय रूप रे कह बास तास कह कौन भेक कह नाम तास है कौन जाय जय शत्रु मित्र नय पुत्र भा करुणा निदान कारण स्वरूप जय चक्र चैन रंग रूप जय खेत वे न कर्म का सब जीव जंत की कर्तपाल उर्दंग बृहत सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग अपा जुद्धंग अनु जय रूप रेख ने रंग राग अन छिजते अन भिजता जल थल मई बन तन दुरंत जय नेत नेत निस दिन उच्चरण।

खंड खंड प्रचंड पारन पूर्ण प्रेम की प्रीत सिंबार पारण पास कह पदमाप वेद का देव अभेद उच्चार रोजी राज विलोक राज रोग रुआन की रोज नटार कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविक भगवान बना।

ना मोह ना रोग ना सोग ना भोग ना भय। देह विहीन सनेश बोतन विरक्त अके अच्छा है। जान को देत अजान को देत जमीन।

सो पेट ही के पट बीच बचाव जज भुजंग सो दान दे अभेद मैं सभी कर त्यावा भूम आकाश पदार सास जज भुजंग सब सिन्यावा पास गए नहीं पार प्रवाह को नेत ही नेत वेद बतावा हो थके सभी कुजिया सुर हार परे हर आतनाव नार से चतुरानंद से रूम नारिक से समूह मिल गायो वेद कते न भेद लखे हो सब हार परे हरात न आयो पास गए नहीं पार उमाप सिद्ध सना सनंदन त्यायो ध्यान धरो तह को मन में जह को अमितो जिस बै जग छायो वेद पुराण कते पुराण अभेद निर्वाण सब पछारे भेद न पा सक्यो अन भेद को खेदत हन छेद पुकारे राग ना रूप ना रेखे ना रंग ना साक ना सोग ना संग तिहारे।

अत्र के चले या छत्र के धरे या छत्र धारियों के चले या माँ सतरन के साल हैं दान के दिवे या माँ मान के बढ़े या अवसान के दिवे या कटे या जम जाल हैं ज्योत के जिते या विरोध के मिटे या माँ बोध के दिवे या माँ मानु के मान हैं ज्ञान के ज्ञात माँ बुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल हैं पूर्वी ना पार पाव हिंगुला हिमालय गत्या वह गुरु गर देजी गुण गावे तेरे नाम है जोगी जोग साधे पवन साधना के तेप बांधे आरब के आर भी आराधे तेरे नाम है फरा के फरंगी मारे कंधारी कूरे सिज्जन पच्छम के पच्छमी पछानने जी काम है मराठा मंगेले तेरी मन सो तपस्या करा दरवा तलंगी पहचान धर्म ताम है बंग के बंगाली फिरंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलता है रोह के रुहले माग देश के मंगेले वीर बंग सी बुंदेले पाप पुंज को मलत है गोखा गुण गावे चीन मचीन के सीसने आवे तिब्बत ते आए दो

देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग दान को अभिष कहियत है। रंग में रंगीन राग भूप में प्रवीण और कहो पे न दिन साधीन कहियत है। पाइयन अपार तेज पुंज में अपार सर विद्या के उदार अपार कहियत है। हाथी की पुकार पर

अद्वैत अविनाशी परम पूर्ण प्रकाश महारूप है करासी अनासी का मानिया है जंत्र होना जात जा की बाबू ना मायता के पूर्ण प्रभा की छठा का अनुमानिया है तेज को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है के निजंत्र का जानिया है तेजू को तर है के राजसी को सर है के शुद्धता को कर है से शुद्धता की सार है कामना की खाने के साधना की शान है विरक्तता की बाण के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप के रूपों को रूप है के कुमत को प्रहार है दीनन को दाता है गनीमन को गारक है साधन को रक्षक है गुणन को पहार है सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रोध को अभूत है के अच्छा अविनाशी है काम को कुनिंदा है के खूबी को दीनदा गनीमन गरिंदा के तेज को प्रकाशी है कालों के काल हैं के शत्रुन के साल हैं के मित्रन को पोखत है के वृद्धता की वासी हैं योग को जंत्र है के तेज को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी हैं रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सत्यता को वास है के बुद्ध को कर है देवन को देव है निरंजन अभेव है अदेवन को देव है के शुद्धता को सर है जान को बचैया है ईमान को दिवैया है जम जाल को कटैया है कि कामना को कर है तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महिपन को मंड है क्या स्त्री है ना नर है विश्व को परण है क्या आपदा को हरण है क्या स्वर्ग को करण है क्या तेज को प्रकाश है पाइये न पार पार वार उनको पार जा को कीजत विचार सो विचार को निवास है।

अंजन बीन है निरंजन पर बिना के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के देवन को देव महादेव को देवनाथ भूमि के बुजया है मुहैया महापाल के राजन के राजा माँ साजु के सजा माँ जोगु को जोग दरया द्रुम छाल के कामना के कर के बुद्धता को हर है के सुधता के साथिया है के काल है कुचाल के छीर काजी छिरावत छाद काजी छतरा ने छपा कर काजी छापे काल इंद्र के कुल के हंसनी सी सियारु मेरा सी हुसनाबाद गंगा काजी धार चली सातो सिंध रूल के पारासी पलाऊ गढ़ रूपा काशी रामपुर सोरासी सुरंगाबाद निके रही झूल के चंपासी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ कीरत तियारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ काशीपुर सीसा सी सुरंगाबाद निके सोहियत है हिमा सी हिमालय हर हार सी हल्ला बने हंस कस हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगिरी चांदनी सी चांदागढ़।

मकरान के मृदंग तेरे गीत गायत है। बाकरी कंदारी गोर गखरी जी गर्द चाचारी पान के यारी तेरे नाम त्याहीत है। पूरे पे पल्लाऊ काम रूप औ कमाओ सर्व।

अद्वै अनंत उपमा तोले अच्छा स्वरूप अभ्यक्त नाथ या जानबा सर्वा प्रमाथ जात मई पपन तन प्रफुल्ल सो बा बसंत जात प्रडुल्ले बन तन दुरंत।

सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आद अंत एकै अवतार, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी, सेवकण को सेव गुण सख दियो, सत्रण को पल मोह बद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चींटी ते कुंचर यस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने, जावुद करख करा कर तारा, प्रजाधर तब देहे अपारा, जब आकर्ख करत हूँ कब हूँ, तुम मैं मिलत दे धर सब हूँ, जीते बदन श्रेष्ठ सब धारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही

बरंत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप सरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत्वज खान बहर रच दीनी कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट भयो संकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उवार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत तपाता सकल मलेच्छ करो ऋण गाता जे अस दुजताउ शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत होए मरे पुरख जवन पग परे तहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार धिए हैं ताकि काल निकट नह हैं रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्टन जाए निहर हो ताकि ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध घर मुँह सब होई दुष्ट छा छय सकै न कोई एक बार जिन्त मैं संभारा काल फांस ते ताहे उबारा।

सुहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता, किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को छय करता, श्री अजदुज भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बाशत फल पावे सोई दो

0: वार वही समलेंगे बच्चे सरंजू है दोना उड़ी स्वा मलेश की कर पुड़ा पासार डंका बारे फते का नेक लंका उतार चत्ता चक्रवर्ती चत्ता चक्र उगते सुयाम पाव सुबंग प्रभदास रजूते दुकालम प्रणासे दयालम सरूपे
1: स्नांग संगे या पंगम विपुते
0: देल देखो पुते संवेदन याप्त जिन आने गुरु गोविंद सिंह से काल पुनि सहाय दरबार मित्र दरबारा सचखंड में से निरंकारा लक्ष्मी कृष्ण दरबारा

0: सच्चे तुदाख लख करोड़ सच्चे सप्तान सच्चे सबजो सच्ची तेरी शब्द सच्ची शाला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमै सो कच न कच महला पहला
1: वड्डी वडियाई जा वड्डा नाओ वड्डी वडियाई जा सच ने आओ वड्डी वडिया जाने चलथाओ वड्डी वडियाई जाने हलाओ वड्डी

अपराधी दूना निवै जो हंता मृगाय। शीश निवाय क्या जा हृदय कुसुदय जाय महंगा पहला। पढ़ पुस्तक संदेश।